0: फुंका हाम पैले जत न आकाशवाणी आगोतला तबसंग जागो तिनी फुम गरनी कबरक पांदा हायुनी खरां पांदा पैले जत न लामसगो तिनीनी सालमारी इंखा तालियुं तालनी साल ची थाम सालमारी सासाय ब्रीरा थामचित बा तिप्राबिसी जुलाई तालनी साल ब्रै सालमारी नैसाय नैसिदक ख्रीष्टबिसी तिनीनी साल चा साल ओ पांडा आवयिंगै तंगो नैरा थामचित फुटा ब्रै मिटार एबा सासा नैरा दक्षिचिकु किलो हार्सो आकाशवाणी आगरतला पांडा पैलाओन जों ककाह हामबाय तिनी हायुनि खरां पांडान जेंलायानो तिनी बागै ककाह हाम तबुई फाइका स्वामी विवेकानंदनि ककाह हाम बायथान पैत' ख्लाय मानिया रग कायत' नबो पैत' ओंगै मानिया नास्लेरमा फानिस्लाय हामजाकमानि फान बलायनो मरक्कुक असंसार ताबो बलायनो नांसुगो तमुं काहाम असंसार आबहाय बरक नन नांगो जे बररकनि लांगमा हामजाकमा कुपलुं तै बयनि काहाम नाय नाय अजंतई सामंसादि सालब्रुम ब्रुम दियाइदि बिजाब खोकटांदि बखारो सुगई वान सुखदि कथु के वान सुख मंगो तंदि तै कक बिटि खलदि हाक्साल नाहार मुनो तैयै हामजाक दे तै बखारो सुगई हामजाक मुनो फनुक दि याक थाग्यावै हामक्रायनि सामं ख्लायन दंदि कक सेबाक दि सय सिमुबाय गथार तै सामं काहाम ख्लायना साकथार दि तामनि हिनखे आरन तंगो बेबा तंथार ननसु बनायन पगैता थांदि नन हामजाक नायन ता नासलेर दि नन पैत' खायनायन ता थकायदि जे दफाव बरिरकनि यकमंक्रै आ दफाव हामक्रायक्रै असंसार सुमस' खनै तंखे आबनिनि थानि तंनाय आसुग्यासे जत' सुग्या हनमान याकारदि तामनि हिनखे आसुग्या हनमानि आबन' थैमुं आबन' सुमसक कबिनि बागै मंसासोक मानमुं कतर याकारै मान' फियाबा मंसासोक मानमुंनि बागै कबैन' ता याकारदि बरक्न' नायमानि न' कायत'नि नायमुं क्लाय' संसारनि बागै अमन' ओंखा पुइलानि सोरोंमुं ग्राखे फानथन्दि फातारनि मंसासोकन'ता सोरायदि माज्राबो ताबेरदि फिया ग्राखे बासादि बायथांन' माज्रा बेरदि हाके नों सायमान्नाय बायथांन' रमै नारोखना बागै अमन' सय सयनि लामा आसुजरा स्वामी विवेकानंदिनी क कहाम खना लाइख्या
1: आओ हंगे ताबुक हाँ खरंग जंगी सा खाना लायन सैमा लायन सा खाम खुलाइन को

0: उस्ट्रोक बेमारनतै कक्टायाथनि ति उस्ट्रोक बाहिकें आबरनो चंखिया सायमालायनो नखनि फादारो किसा अंखारखनो बाक्स बाक्स बरक रग्न सोंनुगु नाथा सोंगै हायकेबा खरक्सा बरकनो रमै हिममानि बाक्सानि खेबा ककसारि माइना अम हाय चोंनुगु तै तै बाक्स बाक्स खेबा बुखुक कय थांमानि हायकेबा याकुं याकमाया ओंमानि नगु अमहा इंखेनो जों उस्ट्रुक ओंखानै सायमानो फियाबा उस्ट्रुक बाहायखों गाहामखे सावैमाया उस्ट्रुक ओंखे जिनि बख्रकनि बिसिङो सिरा एबा नार्भ दंगु आर नार्भ एबा सिराव थैर गाहामखे थांलाय सुख्लायमाया खेनो उस्ट्रुकंगु बाक्सावसो बरक रखे वानसुगु हार्ट एबा बखा रगो गेवमुं फायखे उस्ट्रुकंगु होनै फिया हमो हाया बख्रक बिसिङो सिरादै थै थांलाय सुख्लायमाया खे उस्ट्रुकंगु अरो साथायग्लायो बाक्सावसो बर रग बख्रगो दुखुमांखे एबा लामा रगो एक्सिडेन्ट ओंखेनो एबा आबनो उस्ट्रुक होनै वानसुगु आबा उस्ट्रुक गया उस्ट्रुक दाल नै दंगु कायसेखे इनफेक्सन उस्ट्रुक दै कायसेखे हेमागिरिस उस्ट्रुक बख्रगो थै थांलाय सुख्लाय मायाफ्रु इनफेक्सन उस्ट्रुकंगु कुनु कारने चिनि बख्रगो सिरासै थांगु के हेमागिरिस उस्ट्रुक उंगु उस्ट्रुक प्रडक्ट प्रोटिन बागैनो उंगिमानो अमंखा डायबेटिस दुमाबिरि नोंखे दै थैयबो फाम बांखे हायखे चिनि प्रेसारक बांखे ब उस्ट्रुक उंगिमानो दै थिनि सिरा आरो बुफाम बांखेबो उस्ट्रुक उंगै मानो बख्रगो थै थांलाय सुख्लायमाया खेबो अबनि बागैबो जरा जर उस्ट्रुकंगु टेनसननि बागैबो उस्ट्रुक उंगै मानो सिनि सिनि मारिंखा साकनि यासा बखाक यागाकुं मोखां आसुमसा केबेलतै बर्मा हाय उंगु अबनि लगे लगै ककसाइमियातै मकलबो आसुमसा नुग्याङै थानाय प्रेसारक बांखेबो उस्ट्रुकंगै मानो अबनि बागैनो प्रेसारक जों साब्रुं साब्रुंनो सुना नांगौ दै प्रेसार गोबां हांखे आबौ डाक्टार बाय थांनाय नायजोगै बिथि बेराव जानो नांगौ आबनो कारिबो नों किसा नैनि अबहाय उस्ट्रुक मानजायाङै दंना होनहांखे जों मर्निङाव रोखायनो नांनाय दै बुहम गोनां जामुनु जायै दं नांनाय दै तुमुं नैनि साग्रक किसा प्रेसाराव गोबां हांखे डक्टर बाय थांनि डाइरेक्ट सेरेक मालायनाय बिथि बेराव जानो नांनाय दै मर्निङाव रोखा खालायनो नांनाय ओंखे जों सायमालेखा दिनै हायनखां बान्दो उस्ट्रुक बेमानतै ककथाया थानि
1: आव फारिताबो सां तां भिडिअ हाबलायानो दिनैनि तां भिडिअ मोसाम्बिर कायमानतै थाइजाथानि कक जों सिलायानो मोसाम्बिरिंखा कमलानो कसल बिनि बोतै गोतै गोखा जातबो दङ बिनि बोतै जेफोरजों लेंगि दंगाफोर नोंखांखाय बेलायखे फान मानो भारत हा कतरनि जत्तनिस्लाय गोबां कुक बोथाय थायनायरनि बिसिङ बबो खब जागौ बिनि साइन्टिफिक मुंखा साइट्रास लेम्टा मोसाम्बिर दालबिदाल जात दङ मोसाम्बिर कायनानि बागै सै सै जरा ओंखा जुन तालनि सिमि सेप्टेम्बर ताल मोसाम्बिर कायनानि बागै वाटै नांगौ सेन्टिमिटार स्निजिबा गोसा खाव मोसाम्बिर कायनानि बागै ब्लाइकेन गाहामखौ हा होनजागौ बोथां बोथाय गोबां माननानै होनखाखे हानि पि एच 7.5 ओंखाखैबा जाव दे हा नबो आमजगै नाहारखाखै जासुगौ मोसाम्बिर कायनानि सिगां फ्लेमिं बाय खेत' एबाखे जागा तैयार खालायखे जाव कायनानि सिगाङावनो जाब्रा रग साफ सुथ्राखै तनैनानै नांनाय फांसारा कायनानि बागै सालनानै नांगौ फुट कायनैजिनै हाखर थुखनानै नांनाय फुट गायथाम

0: आउ हंके सङो जराव खनालाय तङो खापंगिया खराय पांदाव नरकनि सिजा कोक्लब दे खनाततक रचापंगलो खनालाय तङो हंकाय नरक ताबुक चिनोरो कोकदुक कायनिय नरक गरंगै माननाय तमंगनो कायसा कोकदुक नम्बरो मानिया हंकाय नरक तकायसा कोकदुक नम्बरो गरंगै माननाय हंकाय तकायसा कोकदुक नम्बर आं नरकनो ताबुक सानाय चिनोरोनि तकायसा कोकदुक नम्बर अंका नरक सिदि 9485007172 अकोकदुक नम्बर अब नरक जेप्रपानो चिनरक गरंगै मानाय दादाक्सिदाक तै नरकनि सिजाक कगलब रबो नरक साहरि मानाय तमुंगनो तकायसा चिनि 0381232 6253 अकोकदुक नम्बर मान्या हंकांकाय नरक तकायसा नम्बर अकोकदुक खायदि तकायसा नम्बर खां हायनो हाय अब कतल हंके तवासा हायनो हाय छापिवन अ कताल नंबर रंखा 9485007172 अकोकदुक नंबर नरक गरंगै मानबायनाय हंके कतालबा नरक अकोकदुक खलाइनायदि ह नंबर हंके अजराव अकोकदुक फाइजाक नायनाय अकोकदुक साबतंग हेलो
1: हेलो
0: सैमालि सार्जनिंखा ओमफ्राय रिजार्भ मुं खोनालायनाय ना ओमफ्राय कोकदुक फाइजाक नायनाय कोकदुकखौ साबदं हेलो फुंकाहाम दलाम सग' सिनिमुंनि गादे साबुंखा दुर्गा पारानि दाखुक जहर ना ओंखे दसा दैनि निसैजा कग्लब रक्त दाथं दंखाखाय दसादि दो आमहाय रखायथ' साया दंखाखायनो जाव जों चिनर' गोबां मा रायदा रक दङ ओंखाय गुबुननि रक दंखाखाय बा सायमानो जों अर' चिनि अर' जों चिनि एफ एम नि बिसिं थैफानांथों एबा खाफांया खराय बान्दानि बिसिं थैफानांथों एबा चिनि अल इन्डिया रेडिय' र' गंगांखे जे मानसाकजों दफा अमाहाय खरकसा ते खरकसा गायसा दफा ते गायसा दफा नती रग' साया गांखे जाव द' बेलाखे हामबाय ककदुक दैग्रोमा बागै ओमफ्राय फायदि अजराव ककदुक यासागै नायनाय साबदं ककदुखौ ओके नाय नाय हेलो हेलो हेलो
2: ओवि
0: हेलो हेलो
2: हेलो
0: लामसगो सिनेमुनि गने साबुंखा सैमालिया सार्जनिंखा गाय अकोकदुगिया सांनाय साबदं हेलो
2: हेलो
0: फुंकाहाम लामसगो
2: मैम आं कमला

0: फैदिया जराव कोकदु गेसक नै शाबतम कोकदु को नै नै हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: खनाय जतों बुखु
1: खनाय जतों बुखु
0: सै मलिया सातनिका अंकाय जराव दिरक दिरक जरा तो थांगै दङ खाबांया खराय पान्दनि गेचें कोकलब खनावै दंलायो नरकनि सैजा कोकलब अंकाय नरक नरकनि सैजा कोकलब खनारना हंका अंकाय कोकदु क्लाइडि 03

गेजरावा कोक्तु गेसक नाय शाबतों कोक्तु को नाय नाय ना हेलो हेलो हेलो साइमालिया सबजनी का ताकुक दंखा बुकुक दंखा साइमालिया अंके सिंग नरोकनी हम सक माचिनी का तुम्हा पांदाव खनालाई तुम्हों नरोकनी कोई हर्चक रचा पुंग रोग अंके जरा तो तरक तरक थांगी तुम्हों अंके कोक्तु गेसक

0: नरकने हमजक माचिनी खातंगमा पांदा जंखना लाइ दं नरकने कय हरजाग्रा चापों गजराव दाबकचिनी स्टुडेंट जराखो कथा मै दंगु दिपोनी दामसा तामै सति थामचि बांगै मुफले शांग जा गजराव नरक जतन न हाय न हाय दिबर काहाम ते नरकने तिनि निशाल जतनि बागिन काहाम लाइन नें तो जराव स्टुडियो आसुक सका गार जे बिनता हंके फायदि नाय लाइने कोक दुगो स्वागतम हेलो हेलो
1: हेलो
0: दिबर काहाम रामसगो
1: মনোরঞ্জনী
0: বড় চাপ
1: মানে
0: হামবাই নুনব হামবাই আও হিংকের চাপ মানখানা নাহিনে কয় হরকা

0: শ্রোতা বন্ধু, শুনলেন গানে আপকে লিয়ে। টিউন করে থাকুন 101.6 মেগাহার্টজ আকাশবাণী এফএম উজ্জয়ন্ত। ফিরে আসছি আবার সংবাদের পর, সমাচার সন্ধ্যা শুনবেন এখন। এরপর আজ রাতে চলবে রাত 9:02 থেকে আজকের প্রসঙ্গ, বন্ধুত্ব নাকি প্রেম।
1: আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুনীশ শর্মা। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक

0: पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणंद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया।

0: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है।

अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधन

घुटनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।